ताइबंग पुंपा यकाई हले इबुंगोगी सरी खोंजलना हरी नामना थोई बनी नसीगी ताइबंगदा हरे कृष्णा हरे राम।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

मखल मथिल की थोरम कया संदुक तुने तहन जरी बासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिग अमुक ताबिरसी सही सकप अमगी खोंजेल द तखेलंब मंदाकिनी देवी न सकप मणिपुरी मतमिशै सिंह मतंग मतंग होइना खुदोल की अहान बदा लोकचुरीबा इसे इसिगी सैरिंगबा एलांगबम इनाउचा सिंह

मखल मथेल की थोरों कया संदुक्तु ने ताहन जरी बाजी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दगिनी हाउजी गमु पुंफम असिद पुदुने लाकली तोंगान तोंगान बा सैसक पसिंग दगी लोखचब गीत मथंग मथंग होइना

ये आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाइकोम सिंह खेंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म तमाशा से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में इस गीत के साथ। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीत ए आर रहमान का।

अभी आपने सुना फिल्म दिल ने जिसे अपना कहां से सुजाता त्रिवेदी और कमाल खान का गाया गीत। गीतकार थे महबूब और संगीत ए आर रहमान का। साथियों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के सांगाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनते हैं फिल्म दिल चाहता है से श्रीनिवास का गाया गीत। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत शंकर एहसान लाइका।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म किस्मत कनेक्शन से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गीतकार हैं सईद कादरी और संगीत प्रीतम का।

बचाइए। नुजा साइनो लगतगी ना तुम नहीं राम घूरुगे, नुजा साइनो लगतगी ना तुम नहीं राम घूरुगे। ओइ न पाइब सना बुल, ओइ न पाइब सना बुल, याई जबू ताऊ हंगे। ओइ न पाइब सना बुल, ओइ न पाइब सना बुल, याई जबू ताऊ हंगे। लगन रुगे नसीदी सान रुगे।

0: मांगनी ला दी पथार को तो छाने बस यहाँ बम जब मी मनी ऐसी है ना कल मरों ता मणिपुर के तोड़ी बा कांग टूर्नामेंट है ना तोड़ी बा मफ़ों जी आ वो कोई वो चल गया ये कांग टूर्नामेंट कांग जी ना लेन जब आई तारी ये देखी लीला दी पथार रख बा मतलब देखी कांग टूर्नामेंट चुकंग कल पुगी मतलब मोइन तोड़ ना ये मतलब लेन है ना बस कांग छाना बगुम बा करी गुंचे सुम लेन जरे अधिक लीला दी पथार आकान मतलब सा सही मंगा तराम बोर से नौरग चतना बोर से नी बोर सेवा जो यहाँ तौजर में है तेम से चतब नाते फने चखरे
1: सुमंग लीला दी हरुप आर्टिस्ट से फिल्म द हे यौजे थेनजेब ओजागी फाउद फिल्म क्या
0: फिल्म दे कमजरत्रे
1: असाइनमेंट फंगीद।

हौजिक ताबे रे खोंचत्सिगी वारिनी थोरमसिदा सुमांगली लागी आर्टिस्ट लाइश्रम जुगेश्वर सिंगा उनदुना वारी बताई साबेगी अनिशुभ तांकक ताहंजखरे उनबिखिबा संगलाकपम देवचंद्र शर्मा अमदि थोरम पुथोकपा नोंथोंबम रोमा थोरमसि संदोकचरिङै मनुंग दखुदोंग चातबा खरलैखिदुना थोरमसि मपुंग फाना संदोकचबंग जहौद्रमसिगी दमकता ताबिरिबा मयाम पुमनमकना पुक्चल चाउना ngapinaba haijari hauje pungphamasida tabiriba singidamakdamuk puzarali hauje hauje youtube live chat talibiriba marumapang singna tabininduna khanbirakpa isai singi thoram

मखल मथिल की थरम कयाम संदुकनु तहंजरी बसे आकाशवाणी फालगी एफएम संगाई चैनल दिगनी खंगन जबामा सेप्टेम्बर की तांग कुल हमदोय युमसकिशन नुमित नुमितुम पुंग तरानी थोय मिनट तरा गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम द थमजरी अखनबा लाइव फोन इन प्रोग्राम थमजरी बहिरमना अफबा हक्सल की दमक आयुर्वेदा की लाइंग द अमांग थोंगी अनाब सिंह एक्सपर्ट ने लिंग सिंह बिगतबा डॉक्टर निंग थौजम पाउना प्रेसिडेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ मणिपुर अदाम लमदम से नुपयी सिंह अखोगी स्टूडियो की टेलीफोन नंबर 8798830293 कॉल तौर खंग हौबगी खुदों चाबा लौबियो टेलीफोन नंबर अमुक हना निंशिंजरी 8798830293।

आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग एफएम संगाई चैनल दा चथजरकदबा थौरम परिंग अमदी हयेंगी थमजरीबा थौरम परिंग मयामदा निंगसिंगजरी निंगसिंगजबा सिलोइबगा संदोकचेगनी नहारोली खोंजेल थौरमसिदा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटरी अमदी शॉर्ट फिल्म ऑफ केरला गिदमक सेलेक्शन फंगख्रबा खोंजोमनुवी डॉक्यूमेंटरी फिल्मसिगी डायरेक्टर सिंग लाइमुजम जॉनसन मैते सेली खेत्रमेयुम अमदी ख्वारकपम चेरोंस देबी उनाबगी थौरम पुंग तरुक मिनट निफु खुंगंगी थौरम थमजरी थौरम असिदा माइबम शेमा देवी सकपा खोंजोम पर्व थौरम की अरोइबदा याइफा युम्बाल की लीला मचा लफोई फाइबोक अईबा मोइरांगथेम अजीत लीला पुदोकपा थोकचोम रेनुबला पुदोकपदा तिंगबांगबा हेमचान निथौजम पुंग तरेट मिनट निफु मंगा मतम की वाफमदा ताहनजगनी ब्रिक्स मिफम इंग्लिसंगनी कुंतरुक अमदी इंडिया अईबा एम सी अरुण प्रोफेसर मणिपुर यूनिवर्सिटी पुंग तरेट मिनट यांखई गुड इवनिंग मणिपुर की थौरम थमजरी फिल्म सैसिंग तहनजगनी पुंग मापल मिनट मंगा पुंग मापल मिनट कुंथ्रा मंगा नहारोली खोंजल संदोकचगनी थौरम लांथोपिगदबा हिजम चितरंजन थौरम असिदा अईबा लमजिंग थोकचोमगा उनाबगी थौरम पुंग तरा मिनट मंगा तोंगान तोंगानब गीत सिंग लांथोकचरगा एफएम संगाई चैनल संदोकपा लुशिंजगनी हयिंग युम सकैश नुमित सेप्टेम्बर की तांग कुल हुमदोय इंग्लिसिंग अनी कुंतरुक लांगबन की तरह निथोय निपानब सकाप तलिसिंग मत चमापल निफु निपाल आयुक पुंग मंगा मखाई ताब मतमदा आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल संदोकप हौजगनी संदोकचगदब मेगाहर्ट सामग अहुम दशमिक मंगा पुंग मंगा मिनट कुंथ्रा तरेट संदोकचगनी यकायरोल हयिंग यकायरोल आर के सुरजीत सिंह सकप पेना सुर संगीत संगम की सिसकप सिंह सकप इमालयबा खुरुमजब इसे लोनना लाइसोल से मैतान कैसंगबम संध्या रानी देवी थौदाम कामेश्वर सिंह तखेलम्बम मंदाकिनी देवी सिदहिदाक थमजरी अयुक पुंग तरुक मिनट तरह लेबांगनिंग बे सिंह लांथोकचगनी पुंग तरुक मिनट तरह मंगा मतमीशेगी खुदोल थमजरी पुंग तरुक मिनट कुमंगा पुंग तरेट लांथोकचगनी खोंजल नाचोम हयेंगी नाचोमद थमजरी मणिपुरी फिल्म सैसिंग पुंग तरेट मिनट निफु संदोकचगनी अथोइब लन थौरम स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इबोटोमी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मीमा की तेमा मखादा पुथोकचब थौरमनी नहारोली खोंजल संदोकचगनी अयु पुंग निपाल थौरम असिदा स्टैंडर्ड रॉबर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल द पांथोकचब टैलेंट हंट की थौरम पुंग निपाल मिनट निफु निथोय गुड मॉर्निंग मणिपुर की थौरम थमजरी फिल्म अमगी इसई तहनजगनी पुंग मापल मखाय पुंग तरा मिनट अनी गीत की थौरम फंगीगनी पुंग तरा मिनट कुंथ्रा निथोय रेडियो लीला तहनजगनी मतम इसई लाइसोल इसई अमदी लेबांगनिंग बैसे सिंह थमजरी पुंग तरा मथोय मिनट कुंथ्रा निथोय नुमे युम्ब मतुंग पुंग तरा निथोय मिनट तरा गुड आफ्टरनून लेडीज लाइव फोन इन प्रोग्राम की थौरम तरा मथोयरक सुब नेशनल आयुर्वेद डे का मरी लेनना अफब हक्सेल की दम आयुर्वेद की लाइंग अमांग थों की अनाब सिंह एक्सपर्ट होने लिंगसनगदब डॉक्टर निथौजम पाउना प्रेसीडेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ मणिपुर उनबीगदब अयेक पम प्रियो बला थौरम पुथोप थोकचोम रेनुबला हयेंगी थमजरीब थौरम परिंग मयामद समलपना निंगसिंगजब लुशिंजरी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंफम लांथोकचरी नहारोल की खोंजेल

0: ताविरे नाहरोल की खुंजल आकाशवाणी इम्फाल हौजिंग मखा ताब थौरम कंगला चैनल दगी ताब फंगबिरगनी
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिंग संदूक सरी खुंगंगी थौरम

0: Adom na thorom tabiri basi akashvani falgi FM sangai channel ni hausik pumpha masida manipuri da pao tapa phang biragani
1: akashvani imphal khetrimayum chitrabanu na pao baziri मुख्यमंत्री युमनांग खेमचान हाई राजनीति खेन बदना राज्य अद शांति हंजनबद पुनः होनाबी तंगाइफदब वफम से इम्फाल ईस्ट जिला की कईरौ विधानसभा केन्द्र तोान तोब चौर की प्रोजेक्ट मंगा संगाबरूम मुख्यमंत्री फोदी मनपुर कालू की इरद नाकल अनम अवाब मायोक्न आई डी पी मुख्यमंत्री की उनर मैं मसा मसा की मयद हंजनबी अपाब सरकार ने थपक ओंथोंब कन होनरी मुख्यमंत्री फोदी संगा की प्रोजेक्ट क्यागैद मॉडर्न एग्रो मार्केट कॉम्प्लेक्स आर सी सी ब्रिज अनि वॉकिंग वुमेन हॉस्टल आर सी सी गैलरी फुटबॉल फील्ड ड्रेन चिंब यौरी थरूम एम एल ए लौरेंबम रामेश्वर पाउनम ब्रोजेन यौन अति ऑफिसल सरुक याखी मणिपुर धर्म की चनबी हराव तैयार लोन हईक्रू हिदोंब की थोरम पांगे मपूब थोरम श्री श्री विजय गोविंद जी सेवा एड कमीटी ने सिंधुन सगोलबंद तंगपात पांगी हंटी थारा हईक्रू हिदोंब की थोरम पांगप चनी निफू निपान सूरे श्री श्री गोविंद जी मंदिर की श्री विष्णु लेंदुना हईक्रू हिदोंब की थोरम पांगी तुम्द यांग तानब की थोरम पांगी हईक्रू हिदोंब की थोरम राज्यपाल अजय कुमार भल्ला लोनबी ज्योति भल्ला एम एल ए आर के इमो हाने की कमिश्नर के राधा कुमार ने चिंबन सरुक याखी थोरम राज्य तोान तोब मफम क्या पांगी सेबा संकल्प अभियान कैंपेन की सरुक जोनल एजुकेशन ऑफिस टेक्नोपोल सिंधुना रचना इब लाइप चांगलब जिला स्कूल अनिद पांगे लायन क्लब थौबाल की कुनिपान सुब चार्टर नाइट थौबाल की खेत्री संगलें पांगे थोरम की सरुक लायन क्लब थौबाल नौना यौरप लायन लायनस क्लब थौबाल की मेम्बर अचंब खुद इकाय खुमी उख्रूल फॉरेस्ट डिवीजन सिंधु महरूसी लाइप चादमब वाइल लाइफ क्वीज कॉम्पिटिशन डिवीजन ऑफिस पांगे चादमब हूंब्रानी सूब वाइल लाइफ वीक की सरुक पांगी कनेक्टिंग हैबिटेट ड्राइविंग वाइल लाइफ है हिरम पांगप चादमब तोान तोब महर हूंब्रा तरुक सरुक याखी इम्फाल ईस्ट जिला की कौब खेत्री लेकाई जुबिनाइल थिएटर ने सिंधु था चुन चथरप वर्कशॉप कम प्ले प्रोडक्शन लोशिंग्रे थोरम राज्य सरकार की चीफ मिनिस्टर की आर्टिस्ट की तेंबांग स्कीम कुनमा कुंतर की मुखाद पंथों प्लेद युम पांगे तमेंलों जिला की अपर ताको विलेज थोद चही तरह तरह खतब महर एमुब तमथी हादगी थोदों मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानिंदब फोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाई वार की सैनिमा लेबासी तोान तोब खेनब लोल चनबी क्या उठली फिल्म है नुहब खत हेन नक्सीबी नाट चनबी युखली गुजरात की एक्टर नागदे पांगप हूंब्रानी सूब नेशनल फिल्म अवार्ड इंथप की थोरम वफम से राष्ट्रपति फोदी थोरम लिस्मरी फीचर नॉन फीचर राइटिंग कैटेगरी अवार्ड मरफुद्रानी खुशी उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्ण मापन सूब इंडियन इंटरनेशनल वाटर वीक लिसी न्यू दिल्ली होदे क्लाइमेट रिजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट है हिरम मंगाने पांगब थोरम नीदरलैंड जर्मनी की मपांग तोान तोब राज्य तरह मरी मपांग राज्य सरुक यारी मंत्रालय ने थोरम चरी चथगदब इंटरनेशनल एक्जीबिशन था कुनग मंगा फाउब पांगी एक्जीबिशन अनौ अनौब टेक्नोलॉजी पोटोक्सी तुम कोब खल गाप वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन क्या उत्कनी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विभाग ने सिंधुना अनीसुब इंटरनेशनल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कॉन्फ्रेंस लिस्टरसु पांगनी कोमलम्पा हॉकी स्टेडियम चथरीब अहम सूब डी जी असम राइफल्स हॉकी कप लिस्टर की सब मैच आर्मी इलेवन मैरा सी ओ एस ई वाई डी सी माइ पाखरे अहब मैच आर्मी इलेवन एस एस बी बु मरी सिनोद मैरा वाई सी सी आई सी तरुक अहम सी ओ एस वाई सी सी आई सी मापन सिनोद ई वाई डी सी टी डब्ल्यू सी अहम थोखरे अहब सिंजम सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट लिस्ट की सब मैच WVSD na Galaxy bu panjal tara anida thoi khre mau martius trophy lising ani kundur ki ngase sani ki ba mesta rabunai na kai bi bu panjal ahom sinoda thoi khre ngase sani ki ba pool di ato pa match amadana chawayu na song song bu panjal ani sinoda thoi khre pa risere

थरम नांगसीगीदमकतदी नहारुलगी खोंजेलगी थरम संदोकसेबा मतांग असिदलु सिंजरी थरम ताबिरम लिबसिंबु अमुका हन्ना खुरुमजरी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। सितारा शाम से निकला हुआ है, दिया भी ताक पर रखा हुआ है, कहीं वो रात भी महकी हुई है, कहीं वो चांद भी चमका हुआ है, कोई नींदों में खुशबू घोलता है, दरीचा ख्वाब का महका हुआ है।

हसीन ख्वाब को जब निगाहों का आसरा मिलता है ना, तो पूरी दुनिया हसीन लगने लगती है, क्योंकि ख्वाबों में रंग होता है मोहब्बत का. और मोहब्बत, मोहब्बत से कायम है सारी खुदाई, मोहब्बत है हर रंजो गम की दवाई. ये रंगत, ये शोखी, ये गुल, ये बहारें, मोहब्बत से हंसी है सारे नज़ारे. ये आसमां पे सितारों की कसीदा कारी, ये सरसर हवाओं के नगमा निगारी, सब कुछ मोहब्बत के दम से है कायम, मोहब्बत से ही है हंसी सारा आलम. और मोहब्बत क्या है, कुछ यही कहता है ये अगला गीत.

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, मगर खुशी मोहब्बत है तो गम भी मोहब्बत ही है। मोहब्बत गर नहीं होती किसी के दूर जाने से, ये दिल तन्हा नहीं होता किसी के रूठ जाने से। किसी के दीद की हसरत मुझे पागल नहीं करती, किसी की याद आकर दिल में हलचल नहीं करती। फिल्म लव स्टोरी का ये गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में आपके लिए है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

0: योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

ना जाने रात की तन्हाई में ये कौन सा जादू होता है कि बीते दिनों की यादें दौड़ी चली आती हैं, धड़कन धड़कन बेचैन हो जाती है, प्यासा प्यासा जर्रा जर्रा बारिश की बूंदें चिंगारी सी सुलगती हैं और तन्हाई विरह में धुनी सी तपने लगती है। फिर ये दिल पुकार कर कह उठता है, क्या कहता है सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के इस गीत में।

मीठे सोज भरे ये नगमे सोई यादों को सहलाते हैं, बीती बरसातों की गुफा में यादों के जुगनू सा जलाते हैं, और ये जुगनू की टिम टिम कोई दास्तां सुनाती है, वो दास्तां जिसमें दो दिल रात के दामन पर कोई ख्वाब सा बुनते हैं, ख्वाब प्यार के इंद्रधनुष का और जन्म जन्म साथ निभाने का। फिल्म भीगी पलकें का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

0: evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. स्टूडियो में आज हमारे साथ श्रोताओं चर्चा करने के लिए विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: थैंक यू. वेलकम सुषमा.
2: थैंक यू.
1: आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 23,350. आरबीआई अब्सॉर्ब्स नियरली 72,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम थ्रू ओवरनाइट variable rate reverse repo auction estimates surplus liquidity in banking system to be over 4.9 lakh crore rupees and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक फिसला. निफ्टी 23,350 के नीचे बंद हुआ. रिजर्व बैंक ने ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम से 72,000 करोड़ रुपए अंतर्लीन किए. बैंकिंग प्रणाली अतिरिक्त नकदी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है. और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घटे.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया. तो श्रोताओं, प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 330 अंक गिरकर 74,529 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 85 अंक लुढ़ककर 23,329 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.1% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.2% नीचे आया. इससे पहले बाजार सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण मामूली बढ़त के साथ खुले थे. हालांकि कारोबार के पहले ही घंटे में उन्होंने अपनी बढ़त गंवा दी और बाद में दोनों सूचकांक फिसलकर कारोबार करने लगे. बाजार ने दिन के निचले स्तर से उबरने की कोशिश की, लेकिन अंततः वे गिरावट के साथ बंद हुए.
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. The Nifty dropped 85 points to settle at 23,329. In the broader market at the National Stock Exchange, the Nifty Midcap 100 Index dipped 0.1%, while the Nifty Small Cap 100 Index declined 0.2%. Earlier, the markets opened with moderate gains supported by positive global cues. However, they surrendered their initial gains within the first hour of trading, with both indices subsequently moving lower. Although the markets tried to recover from the day's lows, but they ultimately ended in bearish territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे अधिक घाटे में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में बजाज फिनसर्व 1.5% से अधिक, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस में 1.5% तथा सनफार्मा में 1.3% की गिरावट आई. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इटर्नल लगभग 2%, इंडिगो 1.5% से अधिक और टाइटन के शेयरों में 0.7% की वृद्धि हुई.
0: Sectors edged downward. Among the top losers, housing finance as well as focused IT lost 1%. Capital goods dropped 0.9% and IT fell 0.8%. In contrast, telecommunications climbed 1%, realty increased 0.8%, services rose 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2087 advanced and 215 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज 22 पैसे मजबूत होकर 95.59 रुपए पर बंद हुआ. सुषमा, हमने देखा कि बाजार ने जो आज अपने कारोबार की शुरुआत की, सत्र की जो शुरुआत की, वो हरी झंडी के साथ की. लेकिन जब खत्म हुआ तो लाल झंडी थी. इस दरमियान क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसे क्रमबद्ध तरीकों से जो क्यूज जिसे हम कहते हैं वो नजर आए इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, जिसने इस तरीके की ट्रैजेक्टरी बनाने में मदद की?
2: देखिए, ये चार दिन के बाद ये बेरिश ट्रेंड फिर से आ गया. और एक चीज तो जरूर है, इसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, ये भी है. और दूसरा ये है कि कुछ जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो अपना पैसा निकाल रहे हैं. हालांकि जुलाई और अगस्त में उन्होंने पैसा डाल दिया था इंडियन मार्केट में, सितंबर में खासकर वो बाहर निकाल रहे हैं. और एक वजह ये है कि एक तो उनको वैल्यूएशंस थोड़ी हाई लग रही हैं, और दूसरा वो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं यूएस में, और रेट्स उनको वहां वैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ वहां ज्यादा मिल रहा है. तो मेरे ख्याल में ये यहां पर जो ये जो माहौल आज का है वो इसी वजह से है. हालांकि क्रूड प्राइसेस नीचे आ रही हैं धीरे धीरे, फिर भी हमारे हमारे नजरिए में तो काफी हाई है. 98 डॉलर्स है, बिलो 100 डॉलर्स आ गई है.
1: क्षेत्रीय स्तर पे हमने बिकवाली देखी आईटी सेक्टर में.
2: हाँ, आईटी सेक्टर में अभी भी ये अगर आप देखें तो ये अभी भी ये एआई का जो असर है, ये जो डर लगा हुआ है कि हमारी आईटी कंपनीज बाहर के जो बड़े बड़े AI giants के साथ कम्पीट ना कर पाए, वो जरूर ये IT क्षेत्र के ऊपर हावी है. और ये कई दिनों से है, ये आज की बात नहीं है.
0: So, Sushma, did FIIs and DIIs today show any clear flow pattern, you know, that amplified the late session weakness?
2: Well, I think it's basically you are seeing this clear thing. Even when the market was going up, that FIIs were pulling out and DIIs were, you know, still investing in the market. And this, of course, is sometimes, you know, analysts are analyzing this and puzzling over that. The fact is that FIIs have far more, you know, they can pick and choose in markets abroad. They feel valuations are somewhat higher here. And of course, you are getting better rates, yields, bond yields have gone up. As far as Indian investors are concerned, they are looking at the long term. And, you know, if you know, these SIPs are going up, mutual funds, the numbers are going up day by day. And they are putting their faith in the long term growth story of this country. So I think there's a very different perspective of domestic retail investors as well as the foreign institutional investors. Completely different outlook.
0: So how much was today's move F&O expiry driven versus fundamental risk off?
2: I would say it's largely expiry driven today because the you know, on the geopolitical front, you could see that, you know, there was an asset. The trends abroad have been better because there have been reports that probably the Strait of Hormuz may open in 7 days. Now, we don't know, but these reports have come in. And therefore, there was a sort of a feeling of cheer. Crude oil prices have come down below the psychological $100 mark. But this having happened, I think it is largely the expiry issue which has caused today's fall in the market.
1: Sushma, निवेश के क्या नीति होनी चाहिए इस संदर्भ में, जब हम देखते हैं कि geopolitical scenario, जो वैश्विक परिदृश्य इतना अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो एक आम निवेशक क्या नीति बनाए अभी अगर वो बाजार में आना चाहता है तो?
2: देखिए, जो आम निवेशक है उसको तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस हाल में जो geopolitical tensions हैं उनकी वजह से मार्केट में बहुत ही वॉलेटिलिटी है. कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है. क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो मार्केट तक गिर जाता है. क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे जो जा रही हैं उनका असर है, क्योंकि इंडिया एक देश है जिसमें हम ज्यादातर अपने

0: ऊपर जो टैक्स नहीं है वो चार्ज लग रहे हैं, कस्टमर के ऊपर नहीं लगने वाले। पार्लियामेंट सेशन में भी इसका स्पष्टीकरण उसी समय मैंने दिया।
1: Global crude oil prices declined today following reports that Saudi Arabia had resumed operations of its east-west pipeline. Brent crude was trading 2% down at $98 and 34 cents per barrel in intraday trade at the time of writing this report. West Texas Intermediate crude was trading 2.6% lower at $93 and 30 cents per barrel in intraday trade.
2: Sushma, तेल कच्चे तेल के दाम इस बीच हमने आज देखा कि गिरे हैं, लेकिन हाँ थोड़े से गिरे हैं, लेकिन ओवरऑल आपसे मैं जानना चाहूंगी कि उसके भाव पर आपकी क्या राय है।
3: अभी देखिए, जब तक ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है यूएस और ईरान के बीच में, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, जब तक दूसरा स्ट्रेट जो है बाब अल मंडाब में अटैक्स हो रहे हैं वो यमन के हूती ग्रुप से, तब तक ये दाम तो बढ़ते ही जाएंगे। और ये जब तक कोई फैसला हो जाता यूएस और ईरान और इसराइल के बीच में, तब तक मेरे ख्याल हमें यही ऊंचे ऊंचे स्तर पर तेल के दाम देखने को मिलेंगे।
1: Should happen at the UN.
3: We should hope so because it's not just, of course in India's case we know that we require a lot of crude and therefore it's very expensive, but it is in everybody's interests. Even the US is feeling the pinch of higher gasoline prices at the pump. Iran is feeling the pinch because they're not able to get their crude out in the market and they are facing economic problem of resources. So therefore everybody wants this war to end. Let's hope something happens.
2: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.8% की गिरावट के साथ 152,136 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.9% लुढ़ककर 232,922 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब करते हैं आर्थिक सुर्खियों की तरफ।
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स below 23,350. RBI absorbs nearly 72,000 crore rupees from banking system through overnight variable rate, reverse repo auction, and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए लुत्फ उठाते हैं गीत मेरे मनमीत का। पहला गीत फिल्म हाथी मेरे साथी से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत। अगला गीत फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: अभी आपने फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज़ों में। इससे पहले आपने फिल्म दूल्हा दुल्हन का गीत मुकेश की आवाज़ में सुना। इसी गीत के साथ ही अब गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम यहीं तक। कुसुम को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। जुड़ते हैं समाचारों से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म जूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित किया। उनका यह संबोधन ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया कई गंभीर तनाव और चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में आना उनके लिए सम्मान की बात है और अमेरिका काफी प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनका देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, अवैध प्रवासन रोकने और अपराध पर लगाम लगाने जैसी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए की। इसके बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अपने फैसले का बचाव किया। श्री ट्रंप ईरान पर हुर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलने के समझौते में देरी का आरोप लगाया। भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। बिहार के जमुई जिले में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदन यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक प्रीति वर्मा को पत्र लिखकर 7 दिन के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत एक स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य सहित सात पदकों के साथ आठवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akash Vani, the news read by Aparajita Nair. President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
4: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "Such instances of aggression against a sovereign neighbour go against regional peace and security." Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the two-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads of states and union territories in New Delhi yesterday, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Prime Minister Narendra Modi yesterday met Sri Sri Vishwa Prasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adokshaja Matha, Udupi, along with other dignitaries in New Delhi. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishwesha Tirtha Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishwesha Tirtha Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideals. At the Asian Games, the Indian women's cricket team delivered the country's first gold medal at the ongoing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue, reasserting its continental dominance, clinched a second successive gold medal at the sporting event by thrashing Sri Lanka by 147 runs in the final at Nishin. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi also assured the nation of at least a medal at each in the Asian Games. Indian men's badminton team defeated hosts Japan in the quarterfinals. India will face defending champions China in the semi-final today. In Wushu, Roshibina Devi advanced to the semi-finals of the women's 60kg event. She secured a 5-0 win over Chu Mansin of Macau in the quarterfinals. India's Aryan also moved to the quarterfinals as he fights for a medal. Indian boxer Jadumani Singh marched into the pre-quarterfinals in the men's 55kg preliminary round. Earlier, Sakshi Chaudhary entered the pre-quarters. In men's cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating host Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs-a-side one-off T20 international match at Sano yesterday. 21 states and union territories signed memorandums of understanding with the Civil Aviation Ministry for the next phase of Udaan, Ude Desh Ka Aam Nagrik scheme in New Delhi yesterday. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

इस गीत में मोहब्बत की एक बेहद सादगी भरी गुजारिश है ना कोई शिकवा ना कोई जिद बस अपने महबूब से इतना सा कहना है कि दिल ने प्यार मांगा है तो उसे ठुकराइए नहीं कॉलेज गर्ल फिल्म का ये गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में शिव कुमार सरोज ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने

रिश्तों की खूबसूरती शायद इसी भरोसे में है कि हालात चाहे जैसे हों साथ कभी ना छूटे इसी एहसास को आवाज दी फिल्म जुर्म के इस गाने में इसे गाया साधना सरगम ने और कुमार सानू ने

कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस आंखें मिलती हैं और दिल की सारी बातें कह दी जाती हैं। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही है जिसे नापा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। होटल फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और मनहर उदास की आवाज में। उषा खन्ना ने संगीत दिया और इसे लिखा इंदीवर ने।

1-800-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 48 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

आधी रात का सन्नाटा जब अपनी गहराई में उतरता है तो हवाओं में भी जैसे कोई मीठी सी खुशबू घुलने लगती है। दिल बेखबर सा बहकने लगता है और रात की तन्हाई में हर एहसास कुछ और भी हसीन हो जाता है। उत्सव फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में। वसंत देव ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अपने घर अपने पिया के घर की रानी होने का एहसास ही कुछ और है इंतजार में सजी आंखें दिल में मिलने की खुशी और हर आहट पर जैसे ठहरती हुई धड़कन पिया का घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में आनंद पक्षी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:46 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो जिंदगी की हर खुशी उसी एक शख्स से जुड़ जाती है उसकी मौजूदगी में हर पल खूबसूरत लगता है और उसकी चाहत ही जैसे जीने की वजह बन जाती है अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसटी बर्मन ने

मंगेशकर की आवाज में अमित खन्ना ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 34 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जब सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।

0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैन सिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ektanagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
3: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country.

वक्त हुआ है 1:10, वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

की बातों को कहने के लिए हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती मगर कभी-कभी दिल चाहता है कि सामने वाला अपने मन की बात खुलकर कह दे कोई झिझक नहीं कोई पर्दा नहीं बस दिल है दिल में जो भी बात है वही सच-सच कह दे बादल फिल्म का आपने गाना सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने

जब इंतजार हद से बढ़ जाए तो दिल की धड़कनें भी जैसे एक ही पुकार बन जाती है, लौट आओ, अब और इंतजार नहीं होता। तन्हाई में डूबा दिल बस अपने हमदम की आहट का इंतजार करता है। मधुमती फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने।

जब दो दिलों की धड़कनें एक सुर में मिल जाएं, तो मोहब्बत अपने आप एक खूबसूरत गीत बन जाती है। तुम्हारे सुर और मेरे सुर का ये मिलन ही तो रचेगा प्रेम की वो मधुर धुन, जिसे दिल बरसों तक गुनगुनाता रहेगा। गूंज उठी शहनाई से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अपने कान का बाला ढूंढती हुई इस चंचल धुन में लोक संगीत की मिठास भी है और प्रेम की खूबसूरत छुअन भी। आपने सुना, ये गीत सुना गंगा जमुना फिल्म से, लता मंगेशकर ने इसे गाया और इसे लिखा शकील बदायूनी ने, संगीत दिया नौशाद ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:28 और ठीक 48 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

0: रहना।
1: क्यों माने?
0: संभल के चलना।
1: क्या जाने
0: यही तो मौसम।
2: यही तो मौसम है कुछ पल बेफिक्र होकर जीने का, दिल की सुनने का, मुस्कुराने का और जिंदगी की हर छोटी सी खुशी को खुलकर महसूस करने का। कल हमारा है फिल्म से आपने गाना सुना, आशा भोसले और रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने।

0: que dar.
1: जब सुरों की मीठी तान छेड़ती है दिल के तार, तो मन भी कहाँ ठहरता है, बस झूम उठता है संगीत की लय पर। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने गाना सुना, रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

मोहब्बत की राह आसान नहीं होती यहां हर कदम पर दिल को संभाल कर चलना पड़ता है कभी प्यार मुस्कान देता है तो कभी वही प्यार आंखों में नमी छोड़ जाता है उड़न खटोला फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने

कभी-कभी जिंदगी हमें अपनों से दूर तो कर देती है मगर दिल की डोर को तोड़ नहीं पाती बिछड़ने की इसी कसक और यादों की इसी मिठास को अपने सुरों में समेटा ये गीत आपने सुना जिसमें एक दिल दूसरे दिल से बस इतनी सी गुजारिश करता है कि जहां भी रहो हमें अपनी यादों से कभी दूर मत करना जबक फिल्म का आपने गीत सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने

लाश ऐसी होती हैं जिनका कोई पता नहीं होता। बस दिल जानता है कि किसी की कमी है और वही कमी हर पल उसे किसी अनजानी मंजिल की ओर ले जाती है, जैसे भटके हुए मुसाफिर अपनी मंजिल तलाशते हैं। यास्मीन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने।

शाम की खामोशी जब धीरे धीरे रात में ढलने लगती है तो तन्हाई और भी गहरी महसूस होती है। ऐसे में किसी अपने की याद, उसकी बातें और उसका गम दिल के बेहद करीब आ जाता है। आह फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

अमर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 44 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने

0: दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। ये समझौता श्री ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की घोषणा के कुछ दिन बाद हुआ है। समझौते के तहत ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में ही रहेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने व्यापार संपर्क मंच का भी जिक्र किया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां और पार्श्व गायिका कृष्णा मुखर्जी का आज मुंबई में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यशराज फिल्म्स ने परिवार की ओर से निजता की अपील की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ektanagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
3: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mamuthi, Karthik Aryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and sovereignty. Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the two-day national conference,

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

मोहब्बत का ये रोग ऐसा रोग होता है जिसका इलाज किसी दवा में नहीं, बस महबूब की एक झलक से होता है। दिल जब प्रेम रोगी हो जाए तो फिर वैद्य भी क्या करे। प्रेम रोग फिल्म का ये गाना आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जिंदगी यूं ही छोटी छोटी खुशियों और खूबसूरत पलों से मिलकर बनती है तो क्यों ना आज की इस रात में कुछ पल मोहब्बत के नाम कर दिए जाएं जहां शिकवे ना हो कोई शिकायत ना हो बस साथ हो मुस्कुराहट हो और दिल में प्यार की एक मीठी सी धुन हो क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 13 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

कभी-कभी जिंदगी की राहें भी किसी सुहानी डगर की तरह होती हैं। कहां ले जाएंगी ये पता नहीं होता, बस कदम बढ़ते जाते हैं। नदिया के पार का ये गीत भी ऐसी ही मासूमियत और गांव की मिट्टी की खुशबू से भरी राहों का एहसास कराता है। ये गीत आपने सुना हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए प्यार की गहराइयों को शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। बस इतना एहसास काफी है कि उस शख्स की मौजूदगी जिंदगी को मुकम्मल बनाती है और उसकी गैर मौजूदगी एक खालीपन छोड़ जाती है। कुदरत फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

अहले दिल की भी अपनी एक खामोश दुनिया होती है। ये लोग मोहब्बत को सिर्फ पाना नहीं निभाना भी जानते हैं। दिल में कितना ही दर्द क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कान सजाए रखते हैं और अपने गम को सीने में छुपा लेते हैं। शायद यही तो सच्ची मोहब्बत की पहचान है। दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

साथ साथ फिल्म से आपने ये गीत सुना चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाज में जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने वक्त हुआ है 2:51 और ठीक 49 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के

0: शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार समाधान तलाशना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी इराटोस्थनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य अनेक परछाइयां एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations.
2: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बने फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित है। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने परंपरा संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Saheb Phalke Award. Mammootty, Karthik Aryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Pakteta provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security. Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world. Inaugurating the two-day National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and Union Territories in New Delhi yesterday, Mr. Shah said the government has prepared a roadmap for 2029 to protect the country's youth and make India drug-free. He said government will collectively succeed in uprooting the drug trade from India by 2029. Department for Promotion of Industry and Internal Trade yesterday organized a stakeholder workshop in New Delhi, focusing on ease of doing business, free trade agreement opportunities and ongoing trade-related reforms. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada attended the event. During the interaction, Mr. Goyal emphasized the government's strategy to strengthen export facilitation through both physical and digital mechanisms. He announced

बजकर 11 मिनट और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना ससदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इश्क एक ऐसा एहसास है जिसकी महक से आप सारा दिन सरोबार रहते हैं। सुन ए बहारे हुस्न, तुझे दिल का हाल क्या बताएं? सुन ए बहारे हुस्न, तुझे दिल का हाल क्या बताएं? तेरी हर एक अदा पर हम तो फिदा हो जाएं। ये रात, ये हवा और ये संगीत का समा, बस तेरा नाम ही अब हमारी धड़कन की सदा बन जाए।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म नाइट इन लंदन से अभी आपने गीत सुना। हवाओं में बिखरी है जो खुशबू किसी अपने की, हवाओं में बिखरी है जो खुशबू किसी अपने की, ये उसी प्यार का जादू है, उसी की कसक है। सुनो तो जरा इन फिजाओं की सरगोशी को, ये दास्ताएं मोहब्बत है किसी अपने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आप आए बहार आई से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि रिश्ते जमीन पर बनते हैं,

पर सच तो ये है कि असली रिश्ता वही है जहां दिल से दिल का तार जुड़ जाए, जहां लफ्जों की जरूरत ना हो, बस खामोशी ही सब कुछ कह दे। आइए सुनते हैं चरित्रहीन फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना।

लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और मुकेश की आवाज में फिल्म संगम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी के सफर में कब कौन अपना बन जाए ये वक्त भी हमें नहीं बताता। बस एक हसीन पल होता है और बात दिल तक पहुंच जाती है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म शक्ति से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

शैलेंद्र सिंह आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अशांति से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों प्यार में कसमें वादे होना लाजमी है और कसमें वादे देकर ऐसे लगता है जैसे एक अटूट विश्वास का रिश्ता कायम हो गया है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कसमें वादे से ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म राज से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आन मिलो सजना से।

दोस्तों अब हम भी चलते हैं और हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार्य समाधान तलाशना है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित 8 मित्र देश अपने हवाई संसाधनों के साथ अभ्यास में भाग लेंगे। वहीं 32 देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी इराथोस्तनीज प्रयोग का आयोजन

करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य अनेक परछाइयां एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:11 और 12 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी हमें हर मोड़ पर आजमाती है, पर हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है और अपनी मंजिल को पाना होता है। जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होगा ना दोस्तों, तो जिंदगी आपको आजमाना भी छोड़ देगी।

साधना सरगम की आवाज में फिल्म जिंदगी तू ना आसमां से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, जीवन से कभी हार नहीं माननी है और हर मुश्किलों में आगे बढ़ते जाना है, बस ये बात अपने मन में हमेशा रखिए। आइए सुनते हैं दूर के राही फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

दोस्तों जिंदगी में हम कितना कुछ देख लेते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी मिलन कभी विरह, कभी प्रेम तो कभी नफरत, और कभी आशा और कभी निराशा। आइए ऐसा ही कुछ गीत सुनते हैं, जिंदगी आ रहा हूं मैं, मशाल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

सुबह के 4:28 और 40 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: सच है क्या सब सच।
1: मुकेश की आवाज में फिल्म जागते रहो से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हम किसी के चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट ला दें तो समझो कि हमारा आज का दिन सफल हो गया। और अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं तो ऐसा समझिए कि आपके कर्मों में एक अच्छा कर्म बीच में जुड़ गया है, उस लिस्ट में आपका एक अच्छा कर्म जुड़ गया है। आइए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों ये तो आपको पता लग ही गया कि कैसे आप अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं, पर जिंदगी में अगर आपने कुछ और चाहे सीखा हो या ना हो, पर प्यार की भाषा बोलना तो सीख ही लीजिए। आइए सुनते हैं फूल और पत्थर फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

छोटी बहन फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाज़ में। और इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूँगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वो वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेताओं, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO संस्था द्वारा FAO 100 Women Heroes and Agri-Food Systems and Rural Development के रूप में सम्मानित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara in Gujarat today. During the ceremony, the president will confer degrees on more than 12,600 students. She will also award gold medals to students for their academic achievements in undergraduate and postgraduate programs. Later, President Murmu will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of the Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, she will also inaugurate the Spiritual Awakening for World Renewal Project and virtually launched the Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. The president is on a three-day visit to Gujarat. Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity in at Ekta Nagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations." Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, President Murmu honored a total of 92 awardees from across the country. Prime Minister Narendra Modi met Sri Sri Vishwa Prasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adoshaka Matha Udupi along with other dignitaries in New Delhi yesterday. On the occasion, Mr. Modi unveiled the logo of the birth centenary celebrations of Padma Vibhushan Yatikula Chakravarti Sri Vishvesha Tirtha Swamiji. In a social media post, Mr. Modi said, "The life of devotion, learning and service of Sri Vishvesha Tirtha Swami continues to inspire countless people." He said the various initiatives being undertaken in the run-up to his birth centenary will further carry forward his noble ideas. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security.
4: We strongly condemned the attacks from Pakistan, the airstrikes which were launched on Afghanistan in their Kunar and Paktika province. In this airstrikes, several civilians have been killed. We deeply offer our condolences on the precious lives lost. Such instances of aggression against a sovereign neighbor goes against the regional peace and security. We also reaffirm our support for Afghanistan, for their independence, for the sovereignty, for their territorial integrity.
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Minister of State for Commerce and Industry Jitin Prasada attended the stakeholder workshop in New Delhi yesterday, focusing on ease of doing business, opportunities arising from free trade agreements and ongoing trade-related reforms. Speaking at the event, Mr. Goyal emphasized the government's strategy to strengthen export facilitation through both physical and digital mechanisms. National Human Rights Commission Chairperson Justice V. Ramasubramanian has emphasized the need for greater collaboration among national commissions to promote and protect human rights. He made the remarks while addressing a statutory full commission meeting with representatives of the seven deemed members of the NHRC in New Delhi yesterday. At the Asian Games in HI Nagyo, Japan, double Olympic medalist Manu Bhakkar and Tokyo 2020 silver medalist Mirabai Chanu will headline India's Stay 4 campaign today with several medal opportunities in the offing. In shooting, Manu Bhakkar will compete in the women's 10-meter air pistol event alongside Suruji Singh and Isha Singh. The trio will compete in the team event and individual qualification this morning with the individual final scheduled later in the day. Weightlifter Mirabai Chanu will take part in the women's 49 kilogram final. India is already assured of medals in men's badminton.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम लेकर आज मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सस्तेवा। आप सभी को सुबह की इस बेला में मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस शांत माहौल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है दिलराज कौर और साथियों ने।

दोस्तों, रास्ते अगर हंसते हंसते कट जाएं तो जिंदगी में फिर चाहे कितने भी दुख आ जाएं उसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता।

खून भरी मांग से। बहुत चीलिए दुनिया की फिक्र में, बहुत चीलिए दुनिया की फिक्र में, थोड़ा खुद के लिए भी जी कर देखो, जिंदगी तू थोड़ा झूम ले। बिल्कुल दोस्तों, हम दूसरों का सोचते सोचते अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने बारे में भी सोचा जाए और थोड़ा सा झूम लिया जाए।